0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: C'est la dernière fin de semaine de la vente sous la tente de Brick. Magasinez les meilleures aubaines de la saison, juste à temps pour votre déménagement. Maintenant, obtenez jusqu'à 70% de rabais sur les articles en liquidation sous la tente. Obtenez jusqu'à 1 500 $ de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 70% de rabais sur les matelas en liquidation sélectionnés. Et achetez plus, économisez plus. Jusqu'à 1 000 $ de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés. Plus, obtenez en prime un haut-parleur de fête Bluetooth avec un achat admissible. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Chez Brick, plus d'économies pour vous.
2: संगीत संगीत
3: संगीत रूदी खुराक है
2: आत्मा दी आवाज है
3: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है
3: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है
3: जिंदगी सांझ है खिमा है
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है
3: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब
3: कल्चर ऑफ पंजाब

कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद। खामोश रात है, साहिलों का साथ है, कोई दिल के करीब तो किसी के दिल पास है। सफर तन्हा है, फिर भी दिल में कई जज्बात हैं। कभी खुशियों की महफिल, कभी गम की बरसात है। यही है जिंदगी की हकीकत कि कहीं महकती सुबह तो कहीं अंधेरी रात है। वेल दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि कभी भी जिंदगी एक सी नहीं रहती। उतार चढ़ाव, दुख सुख आते ही रहते हैं, चाहे हम इनसे कितना भी भागने की कोशिश करें, 'cause they are the part and parcel of our existence.

0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ।
4: कई बार ढेर सारी बातें दबी रहती हैं जहन में, कई सारे सवाल जिनके जवाब सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के पास हैं, उस खास इंसान के पास। पर होता यूं है कि कई बार हालात, कई बार जज्बात, बहुत कुछ कहना चाहते हैं हम, पर ये दोनों चीजें कहने नहीं देती। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे उन्हें, मगर इस जुबान ने कहने ना दिया। कभी वक्त की खामोशी में खामोश रहे हम, तो कभी उनकी खामोशी ने कहने ना दिया।